0: sent to all of mankind, only on Inspire FM.
1: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims, the specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
2: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialise in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
3: Did you know your heart beats around 100,000 times every day? Over a lifetime, it beats more than 2.5 billion times, pumping blood around your body.
4: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
5: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234,
6: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं, और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर एफएम कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।

खिल आजादे तेरे लहरों के दोष पे आवाज की इस खूबसूरत दृश्य से मुंसलिक हम और आप रहते हैं शो में जिसका नाम है बोल खिल आजादे तेरे। पता नहीं अजीब बात है, जब पूरे दिन में अगर बंदे में जान ना हो या कोई भी चीज़ ऊपर नीचे हुई हो, लेकिन जैसे ही शो करने आते हैं तो जो पहला शो ऑफ फोर्स शो ऑफ फोर्स आजकल बहुत हो रही है हर तरफ, तो फिर भी अच्छा लगता है जी। चले 9725019390 लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर लिसनिंग टू रेडियो आजाद वेयर योर वॉइस मैटर्स। आज आपके लिए स्पेशल लिस्नर शो दोबारा लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। वादा किया था आपसे इस हफ्ते दो नहीं बल्कि तीन शो करेंगे हम। पिछले हफ्ते की जो नाराज़गी थी लोगों की, नाराज़गी भी कहा जा सकता है उन लोगों की जिन्होंने कहा जी आप शोज आजकल मिस कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते की छुट्टी लेने के लिए हमने कहा हम तीन शोज़ करेंगे चाहे कुछ भी हो।

0: تو ہم اپنے تیسرے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں, اور اس شو کو ہم یوز کریں گے جو بھی اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ لسنرز شو, کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے جب ہم ٹاپکس میں پھنس جاتے ہیں, قید میں ہو جاتے ہیں, تو آزاد سی نیچر اور طبیعت ہے ہماری, تو پھر ہم لوگوں کو بھی ساتھ چاہتے ہیں کہ وہ بھی کھل کر بات کریں اور شیئر کر سکے چیزوں پہ جو بھی آپ کے ذہن میں, دنیا میں, میڈیا میں آپ جن چیزوں سے بادر ہوتے ہیں یا ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے حاضر ہیں ہم ریڈیو آزاد کی طرف سے. صدقہ جاریہ, ٹھیک ہے, جو جاریہ ہے کہیں جاریہ ہے, وہاں سے کچھ واپس نہیں آ رہا ہے, واپس چاہیے بھی نہیں ہم کو, ہمارا کام اب جاریہ ہے. 9725019390 کو مہربا ہمارے ساتھ کرتے ہیں ان سے بات. ریڈیو آزاد, یو راؤنڈ.
1: جی, السلام علیکم.
0: جی, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
1: میں نے کہا الرجیز نے بڑا آپ کو ایکٹیو کر دیا.
0: نہیں, الرجیز تو اب نہ بھی ہوں تو میرے پاس اب الرجی بہانہ رہ گیا ہے. جب بھی میں سلو ہوتا ہوں یا کام الٹا چل رہا ہوتا ہے, جو بھی چل رہا ہوتا ہے نا, تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں. میرا ایک دوست ہے, وہ کہتے ہیں کہ سر کچھ بھی ہو جایا کرے, آپ صرف شو, جسٹ شو اپ فار دا شو, ریسٹ یو اینڈ وی ول ٹیک کیئر آف اٹ. تو پھر میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, جب بھی مجھے موٹیویشن, مجھے جب تھک جاتا ہوں میں یا میں کسی دماغ میرا پھنس جاتا ہے رائٹنگ میں یا کسی اور چیز میں, اور آج کل میں سخت لاک لگا ہوا ہے مجھے, تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسی طرح, لیکن اگلے ہفتے لاک بھی توڑ دیں گے اگر کھل نہیں رہا تو.
1: آج کل تو وہ آ گئے ہیں لاک کٹرز, آ گئے.
0: ہاں جی, آج کل ویسے خبروں میں کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے اتنے ٹارگیٹ لاک کیے ہوئے تھے پھر ہم نے نہیں گرائے. مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ, سیریسلی تو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں. جی
1: بالکل, ہر میٹر کی خصوصیت ہے. مثلاً کہ لکڑی کا ٹکڑا آپ ڈالیں تو پانی پہ تیرتا رہے گا, اس کو جتنا آپ نیچے کرنے کی کوشش کریں ابھر کے اوپر آئے گا. لوہے کی ہے تاثیر, یا لوہے کی اپنی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ڈالیں تو پانی کے تہ میں بیٹھ جائے گا. لیکن انسان میں دیکھتی ہوں, صدیوں سے سینٹ, صوفیز, گروز, ویژنری لوگ آئے اور ساری کتھا کہانی اور اینڈ آف دا اسٹوری آف ہیومن لائف سمجھا کے چلے گئے کہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف یہ ایک طرح سے, میں یہ نہیں کہوں گی کہ الیوژن اس سینس میں, بٹ الیوژن یہ کہ آپ پیدائش سے بڑھاپے تک جو کچھ ہے سب چھوڑ کے چلے جانا ہے. لیکن انسان کی فطرت میں یہ فتنہ, فساد, لڑائی, جھگڑا, یہ تو شروع دن سے ہے اور آج بھی جاری ہے, اور کسی طرح انسان یہ سب چیزیں دیکھتے بھالتے سدھرنے کی کوشش نہیں ہے بلکہ اور پاتال میں گرے جا رہا ہے. تو آج کا دور میں یہ کہوں گی کہ وہ دور ہے کہ جس میں نیوکلیئر ایک بٹن کی دیر ہے دبانے کی, لیکن انسان یہ نہیں سوچتا, نہ سرحدیں رہ جائیں گی جب وہ لوٹ کے جانا ہے اس کو, تو نہ یہ مال متا, نہ یہ سب کچھ جو انرجی وہ پرسیو کرے گا یا گین کرے گا جس کو ہم کہتے ہیں نیکی, وہ بس جانی ہے ساتھ. لیکن اس کے باوجود میں یہ دیکھتی ہوں کہ حوث ساری یہ چیزیں, چینا جھپٹی, مار دھاڑ, ایک دوسرے کے حسد, بغض, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا, یہ ساری چیزیں چھوڑتا نہیں ہے, اور آج بھی ہم انہی مسائل کا شکار ہیں جو صدیوں سے تھے. تو ایسی کیا چیز کوئی معجزہ ہو جو نبی اور اللہ تعالیٰ کا ہم کہیں گے پیغام بھی نہیں کر سکا,
0: بہت اچھا پوائنٹ ہے, میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. یہ آپ نے تین چار چیزیں جو سیکوینس میں بتائی ہیں نا, میں نے ساتھ ساتھ لکھ دی ہیں, میں اس کو تھوڑا سا ریفریز بھی کر دوں گا تاکہ آسانی ہو جائے کوشچن بنانے میں, اور ساتھ اس کے بارے میں کچھ بات بھی کرتے ہیں. کوئی ہے ہمارے ساتھ ریڈیو آزاد؟
2: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں؟ بالکل بزینس ختم ہوئی آپ کی؟
2: Oh, I'm always busy, honestly.
0: اسی لیے آپ کے لیے پھر ہم یور ہائینس کی جگہ یور بزینس کر سکتے ہیں.
2: بالکل بالکل,
0: فرمائیے.
2: Always busy. So,
0: پچھلا شو سنا آپ نے؟
2: I'm sorry.
0: پچھلا شو سن پائیں آپ؟
2: میں نے سنا, پچھلا بھی سنا, وہ وار پہ بھی سنا. ایکچولی وار والا اٹ واز سو امیزنگ بیکاز آئی ہیڈ سو مینی کوئسچنز ان مائی مائنڈ فار ایئرز, اینڈ وین آئی لسن ٹو اٹ, اینڈ آئی لسن ٹو اٹ ٹوائس. Because I always used to think, why people fight? Why these countries fight? Why can't they just rest, stay in peace, you know?
0: Especially but why Pakistan and India? Ye aapas mein inka kya chakkar chal raha hai itne saalon se? Ye iski koi oont karvat kisi karvat nahi baithta. To bahut sare reasons abhi samajh aaye aapko?
2: Yeah, exactly.
0: Kuch cheezein aisi thi jo aap kabhi sochti thi کہ آزاد صاحب جب شو کریں گے. بہت سارے لوگ مجھے میسج کر رہے تھے اور کالز کر رہے تھے, کیونکہ وہ میرا ایک پاکستانی ہونا, ایک مسلمان ہونا, ایک میرا فوجی ہونا, اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں لوگوں کے دماغ میں, کیونکہ وہ ان چیزوں کو कंपार्टमेंटलाइज करते रहते हैं और वो ये देखना चाहते हैं यार ये बंदा कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी चीज़ करेगा या हमें बताएगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये बायस्ड आदमी है। उनकी ये हसरत बेचारों की, जिनको अकल और समझ है उनकी ये हसरत ही रह जानी है। लेकिन आपको जो लगता था कि इस चीज़ पे जब हम बात करेंगे तो ऐसा कुछ निकलेगा?
2: Right, the thing is, no, there was no bias there. Mm-hmm. It just looks like it's all, you know, I mean, mujhe to, honestly, mujhe politics samajh mein nahi aati. I'm totally, you know, away from those things. Mm-hmm. You know,
0: so politics jo hai na, politics jo hai. Mm-hmm. It's a, ye art hai resolution ka, kisi bhi problem ko hal karne ke liye, asal mein. Mm-hmm. Agar mm-hmm. aapko world ki na, agar aapko thoda sa sochne aur samajhne lagenge, to agar aapko ghar ki politics nahi samajh aa rahi na, रिश्ते mm-hmm. की पॉलिटिक्स नहीं समझ आ रही तो आप कभी भी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स नहीं समझ पाएंगे। ठीक है mm-hmm. रब जो है वो इंसान से इस बात का तकाजा करता है, उसकी ये डिमांड है कि वो अपने दिमाग को खोले, चीज़ों mm-hmm. को समझे, चीज़ों को सब्जेक्टिवली right. समझने की कोशिश करे। पहले वो सेल्फिश होता है, शुरू में नहीं होता वो सेल्फिश। आपने देखा बचपन में हम चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर लिया करते थे, बच्चे टॉफियाँ ये सारी चीज़ें वगैरह, कभी कभी पक्के हो जाते थे किसी चीज़ के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो दुनिया की देखा देखी में हर बंदा अपनी चीज़ को पकड़ लेता है, अपने पैसों को वो बढ़ाता रहता है, चीज़ें करता जाता है। लेकिन अगर आप इंसान को नहीं समझेंगी ना, उसकी तरफ से आने वाली कर्व बॉल जो आपका जहन आपके ऊपर फेंकता रहता है, और आपके करीब तरीन रिश्तेदार जिन्होंने आपको पैदा किया उनसे लेकर बाकी के इर्द गिर्द जिनके साथ आप बड़े हुए हैं, और दोस्त आपके और आपके करीब तरीन लोग, वो एक रिफाइंड सी एक जेलसी में लोग पड़ जाएंगे और उन्हें कभी पता नहीं होगा। वो एक कुछ लव्ज़ होंगे, कुछ एक आँख का देखना होगा, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन होगा जिससे आपको सब एक सेकंड के लिए समझ आती है, लेकिन उसके बाद आप उसको अनदेखा करते हैं। यही वो अनदेखापन है जिसकी वजह से आप बड़े बड़े धोखे, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें और बड़ी बड़ी परेशानियाँ उठाते हैं। हालाँकि पहला साइन, पहला सिग्नल, ये सब कुछ आपका इंसान होने के रिफाइन इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से आपको पता चल जाता
2: है। एज के साथ भी आई थिंक द मोर यू गेट एक्सपीरियंस देन यू लर्न मोर।
0: हाँ जी, ये एक अच्छा बहाना है, सही कह रही हैं आप। हम अक्सर अपने आप को ये कहते हैं, लेकिन वो गालिब ने कहा था ना, हर दाढ़ी वाला बुजुर्ग नहीं होता। मैंने एज के साथ साथ लोगों को सिर्फ बर्बाद होते देखा है, मैंने लोगों को रिजिड होते देखा। जिन लोगों को मैं 20s में जानता था ना, वो बड़े फन, एक्साइटिंग, छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होने वाले लोग थे। वही लोग जब उनको मैं 35, 40, 15, 20 साल के बाद मिला, वो इतने रिजिड हैं बिना जाने, वो रिलीजन के बारे में इतना रिजिड है बिना जाने, वो अपनी चॉइसेस इन लाइफ के बारे में इतना रिजिड है बिना जाने, वो जिन लोगों से मोहब्बत करते हैं वो उनके साथ इतने रिजिड हैं, और वो उनके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन वो इतने टाइट हैं कि वो कुछ नहीं दे सकते, ना कुछ ले पा रहे हैं, जो उनको चाहिए वो भी नहीं ले पा रहे। तो ये एज के साथ साथ अगर हम डायरेक्शन सीधी नहीं होगी, एज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सपीरियंस हो जाता है इंसान को, लेकिन एक्सपीरियंस को अगर आप इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप नॉलेज लिए चले जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन उम्र के साथ साथ आपको आती चली जा रही है, और तकलीफ दे बात यह है कि एक सर्टन स्पेसिफिक जॉब में होने की वजह से जो लोग नॉलेज गेन करते हैं वो समझते हैं हम नॉलेजेबल हो गए। वो एक डॉक्टर है बेचारा, मरीज ही देखता रहता है 20 साल, वो समझता है मैं नॉलेजेबल हो गया, हालांकि उसने अपनी ज़िंदगी के ज़्यादातर आवर्स जो हैं वो डॉक्टरी में लगाए हैं, तो वो डॉक्टरी में नॉलेजेबल हो गया है। उसमें अभी वो देख के बता सकता है पेशेंट को, चीज़ों को, बहुत सारी बातें बिना किताब को देखे, बिना कंप्यूटर खोले, बिना चीज़ें किए वो बता सकता है। एक्सपीरियंस एक सर्टन तरीके का हो गया, लेकिन वो अपने आप को नहीं जान पाया, वो अपने रिश्तों को नहीं जान पाया, अपने क्रिएटर को नहीं जान पाया, वो अपने मकसद को नहीं जान पाया। इसीलिए ये तमाम ज़्यादातर लोग जब आती है ना, बेंटली की चाबी रखते हैं ऐसे, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद उनको सूरत पुरत मारी जाती है जब वो अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो मैं खोल के कहता हूँ सर ये ऐसे ऐसे है, ये मैडम ऐसे है, या भाभी जी ये बात ऐसे है, तो कहते हैं ये तो फिर सारी ज़िंदगी ख़राब होगी, मुझे कभी समझ नहीं आई, ये तो बहुत सामने थी बात। तो इसका मतलब ये है कि लाइफ हमारी प्रायोरिटी नहीं। हाँ एक बात है, अगर मैं आपको पैसे दूँ ना, कि आज से मैं आपको पैसे दूंगा, 9 to 5 में आप कमाते हैं $1.5 लाख, मैं आपको दिन दूंगा $3 लाख, सोने के 8 घंटों को छोड़ के बाकी के जो 16 आवर्स हैं ये आप मुझे दे दें, और ये आप सोच कर करेंगे तो मैं आपके पैसे कम करूंगा या बढ़ाऊंगा, रिजल्ट दोगे कम करूंगा या बढ़ाऊंगा, रिश्ते अगर अच्छे नहीं तुम्हारे चल रहे मैं तुम्हें पैसे दूंगा रिश्ते रखने की, आप यकीन करें ऐसे परफेक्ट रिश्ते बनाएंगे लोग। ये सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है, ये सारा कुछ घूम फिर कर, ये जंगें, ये घर की जंगें, पावर, पावर से पैसे का ताल्लुक है, पावर से बाकी चीज़ों का ताल्लुक है। मैं अगर खोल के रखूँ ना, मैं पूरे इंडिया की हिस्ट्री आपके सामने खोल दूंगा, मैं इस वक्त मोदी जी जो फरमा रहे हैं और जो करना चाह रहे हैं और आगे क्या होने वाला है ये भी मैं खोल के रख दूंगा, और आज 20 साल के बाद जब ये कोई बंदा सुन रहा होगा वो कहेगा बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पहले में मैंने जो 20 साल पहले बताया था वो भी वैसा ही हो रहा है, क्योंकि नेचर नहीं बदल रही है। नेचर इंसान की नेचर, जब आप के पास कुछ नहीं होता, जब आप बहुत नीचे से उठ के बहुत ऊपर आते हैं, तो वो जो आपके कॉम्प्लेक्सेस, वो इनसिक्योरिटीज़, वो सारी चीज़ें एक बंदे की ज़ात से होते हुए पूरी नेशन में ट्रांसफॉर्म कर जाती हैं, और अगर उसकी सज़ाएं भुगतनी है तो वो बंदा नहीं भुगतता, पूरी नेशन भुगतती है, चाहे वो इधर हो चाहे वो उधर हो। बॉर्डर शॉर्डर तो बहुत बाद में, बॉर्डर तो ये 100-200 साल पहले बने हैं सारे, इससे पहले तो बॉर्डर्स नहीं हुआ करते थे। इब्ने बतूता याद है आपको, बगल में जूता लेके दुनिया में जहाँ मर्जी चला जाता था। अब हमको नहीं जाने दे रहे, अब हमें हर जगह के वीज़े और ये मसले और वो मसले कर रहे हैं। 200 साल पहले ये कुछ भी नहीं था, 200-300 साल पहले तो इतनी आबादी भी नहीं थी। उन्होंने आबादी को जिस तरह और ये बाकी चीज़ें की हैं, इस वक्त दुनिया की आबादी एक्चुअली नंबर्स में 3 बिलियन के नीचे होनी चाहिए थी। तो 3 बिलियन होती तो ना हाइब्रिडाइज्ड वीट मिल रही होती है आपको, ना आपको इंसेक्टिसाइड्स, पैसे ऑर्गेनिक खा रहे होते, नेचुरल चीज़ें कर रहे होते, सब कुछ हो रहा होता, लेकिन बाकी के 5 बिलियन मुँह ना होते, उनकी ख्वाहिशात ना होती, उनकी चीज़ें ना होती, इतने अरब खरब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ना होते। सो ये सारे का सारा सब पैसे के लिए हो रहा है, जिसका हमारी ज़िंदगी में एक्चुअल में इतना लेना देना नहीं था। वो कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए ज़िंदगी के लिए, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, उसके लिए 7-8 घंटे का काम करना इज मोर देन इनफ। बाकी ज़िंदगी, रिश्ते, अकल, समझ और ये सारे काम करने थे जो हमने नहीं किया, तो उसकी सज़ाएँ, घर में भी जंग है। पहली सज़ा पता क्या होता है, ना इल्म होने की या बेइल्म होने की, अपने अंदर की जंग, अपने अंदर से जंग शुरू। आपने खुद महसूस किया इंसान के अपने अंदर कितनी जंग है, वहाँ से आदमी हारना शुरू करता है। तो जो आदमी अंदर की जंग हारता है वो बाहर की जंगें जीतने की कोशिश करता है, वो कभी नहीं जीत सकता। अंदर की जंग रिश्तों में आती है, ख़ानदान में आती है, ख़ानदान से वो सड़क पर आती है, वो ऑर्गेनाइजेशंस में जाती है। जो बचपन में हुआ हुआ है वही आम बेचारे सारी ज़िंदगी वही झीलते रहते हैं, और वही का सब आगे जाकर स्टेट्स के अंदर भी वही जंग दुनिया में आपको नज़र आती है। और अभी थोड़ी देर पहले जो शहनाज जी का क्वेश्चन था कि कितने पैगंबर आए, 1,24,000 बताए गए आपको, और उसमें से आपको 28 के नाम आते हैं, बाकियों को हम मानने की मान ही नहीं रहे, ना राम को मान रहे हैं लोग, ना सिद्धार्थ को मान रहे हैं, वो किसी को पैगंबर मानते नहीं, सिर्फ ये कहते हैं 1,24,000 आए थे तो उसमें से 28 बताए गए, 25 से 28 के नाम हैं, बाकी कहाँ हैं। जिस जिसको हिस्ट्री बता भी रही है लोग उनको नहीं मान रहे, सिर्फ कहते हैं हैं, कहाँ हैं, रिजल्ट्स भी सामने आ गए, रिकॉर्डेड हिस्ट्री भी आ गई, बस नहीं मानना, क्योंकि दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा। हर चीज़ जो हमारी है बस वही हमने दुनिया को बतानी है, बजाय इसके कि उनसे भी देखना है, समझना है, साथ मिलकर चलना है। तो ये वो बातें जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ आ नहीं रही हैं, और ये बातें सोचने से समझने से आदमी थक नहीं जाता। आदमी जितना इल्म होगा ना, असल में चीज़ दो चीज़ें हैं, कहते हैं जहालत की ज़िंदगी जी लें वो बेइंतहा अजाब है, दूसरी तरफ जानना हमेशा ना जानने से बेहतर होता है। वो कहते हैं ना, ईवल यू नो इज़ बेटर देन द ईवल यू डोंट, तो एटलीस्ट यू कैन डिसाइड कि विच वन टू चूज़। और ये कोई इतना लंबा काम नहीं है कि इतना स्ट्रेस ले लें हम, मर जाना है हमको। जिस दिन आपको ये एहसास हो गया ना, जो मुझे हुआ था कि आखिर मुझे मर जाना है, तो मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई थी। अगर मर ही जाना है फिर हराम क्यों खाना है, फिर गलत काम क्यों करने हैं, किसी पे जुल्म क्यों करना है, किसी की औलाद को क्यों बर्बाद करना है, अपनी को क्यों बर्बाद करना है, अपने जहन को क्यों बर्बाद करना है, रिश्तों को क्यों बर्बाद करना है, बाकी मज़ाहिब और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अगर जीनियस बनना है तो जीनियस का रास्ता है, ईवल जीनियस बन के क्यों बर्बाद करना है, चॉइसेस होती हैं आपके पास। तो ये सारी बातें जब आप इस तरह सोचते हैं तो इसमें कोई इतना मेरे जैसा आम हैंडीकैप ब्रेन का आदमी जो कि बेसिक फंक्शनल नहीं था और सेन रहना उसका मुश्किल हो रहा था, तो उसने अगर चीज़ों को सही प्रस्पेक्टिव में लेके यहाँ तक ज़िंदगी में आ गया है। इसीलिए तो मैं लोगों की इस बात पे यकीन नहीं करता जब वो कहते हैं कि जी मेरा कुछ नहीं बन सकता या मेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं कोर में जाकर उनको खोल के देखता हूँ तो ये सारे लोग मुझसे बेहतर लगते हैं मुझको। तो अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो इनमें से कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन अपने अंदर के उस पावर को वो अनलॉक ही नहीं करना चाहते। ये ताला अंदर से खुलता है, वो उसको खोलना ही नहीं चाहते। तो एक हद के बाद हम क्या कर सकते, बोर तो नहीं कर रहे हम आपको?
2: नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, एक्चुअली दैट्स आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम योर शोज, एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर आई एम एबल टू रीऑर्गेनाइज माय लाइफ इन लास्ट फ्यू इयर्स। ऑनेस्टली आई एम इन अ पोजीशन वेयर आई एम टोटली एट पीस फ्रॉम इनसाइड आउटसाइड। ऑनेस्टली I have the environment what I wanted to have in my life, honestly. So I have learned so much, and every day when I listen to your show and, you know.
0: But you are actually creating your life, ठीक है? ये जो आपने कहा, जब तक जो दो किस्म की चीजें मिली हुई हैं, controllable factors और uncontrollable factors. Uncontrollable कभी भी आपके control में नहीं आएंगे. आपने कहाँ पैदा होना था, आपका रंग नस्ल क्या है, आपका कद कितना होना है, इस किस्म की और कुछ चीज़ें हैं, basics. और उसके बाद मरना कब है आपने, आपको एक गिफ्ट मिला हुआ, आपका उसका कोई कंट्रोल नहीं है, वो माँ के पेट में डिसाइड हो जाता है फर्स्ट ना लास्ट थ्री मंथ्स के अंदर. वो मैं किसी दिन वहाँ की जो कॉन्सेप्ट है रिलीजन का और जो साइंस बताती है वहाँ से आपको कॉन्शियस माइंड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में. तीसरा शो भी हमारा रहता है जो कि मुझसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो नहीं पूछ पाते लोग, बट दे नीड टू नो दीज थिंग्स कि क्यों हम बार बार एक ही गलती करते हैं, क्यों समझाने के बाद हज़ार दफ़ा समझाने के बाद भी हम वही चीज़ें कर रहे होते हैं, ब्रेन कैसे बनता है, न्यूरोसाइंस क्या है, हम कहाँ से चैलेंज्ड हैं और उन चैलेंजेस का क्या हल है, और टफ लव का असल जो कॉन्सेप्ट है. अभी तक जो बातें दो शोज हुई हैं उसमें भी हमने वो बात नहीं की है. जब आप उनको अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, बच्चों पे, बड़ों पे, दुनिया की किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आपको वो सारे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे और आपको टफ लव अपने आप से, इस दुनिया से और रब का ये सब नज़र आएगा, क्योंकि रब का हमारे साथ जो लव है वो बेइंतहा लव होने के साथ साथ टफ लव उसके अंदर इनबिल्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड है, जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं. और वो क्यों है, उसकी एक रीज़न है जो हमारे रिश्ते में भी होनी चाहिए, जो इंसानों के साथ भी होनी चाहिए. तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें समझ आएंगी. रिसेंटली कोई चीज़ आजकल कोई चीज़ बॉदर कर रही है, ये जंग वंग से जो मामला चल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं लोगों से आर पार के?
2: Honestly, I don't listen to the news much. I don't have much time. But yes, when you just go on the internet, you some things pop out. Then I listen to the news.
0: क्या लग रहा है आपको? आपको मीडिया में क्या लग रहा है? क्या कभी इंडिया मीडिया, इंडिया का जो मीडिया है, अगर आप सुनती हैं, तो क्या लग रहा है आपको?
2: You know, I don't listen to the much news, of course.
0: थोड़ा बहुत सुनती हैं.
2: Because it makes me, you know, when I see all this. I don't know. I just become sad because when I see innocent lives, you know, being lost, people, you know, and it's all the time that innocent people are the ones who suffer.
0: Oh, इसीलिए वही तो, इसीलिए तो पैदा हुए हैं ना. वो इन्हीं एक्सपेरिमेंटेशन की नज़र हुए और हम सब लोग उस एक्सपेरिमेंटेशन की नज़र हुए. हम तमाम लोग जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के साथ, और जो पिछली पीढ़ी है, जो उससे पिछली पीढ़ी है, जिन्होंने एक दूसरे के साथ, ये ना जानने की वजह से होता है. जब आप रिलीजन को नहीं जानते, जब आप रब को नहीं जानते, तो फिर उसकी ये सजाएं हैं. आपको पता है जो लोग एक दूसरे के साथ 1947 में और उससे पहले साथ रहते थे, दिवाली मनाते थे, ईदें मनाते थे, सब कुछ करते थे, जब वो पार्टीशन हुआ, इन्होंने एक दूसरे को उन्हीं मोहल्लों में, उन्हीं गलियों में, जिन बच्चियों के साथ बड़े हुए थे, जिन बच्चों के साथ बड़े हुए थे, जिनके साथ सब कुछ हुए थे, वहाँ पर इतने बड़े बड़े जुल्म दोनों तरफ से किए गए और ऐसे ऐसे कत्ल हुए कि तकरीबन 10 लाख लोग मारे हमने एक दूसरे के. सिर्फ ये तब होता है जब आपको पता ही नहीं होता, जब फ्यूल कोई और करता है, मकसद किसी और का कुछ और होता है, और हम तमाम लोग सिर्फ बेसिक ह्यूमन होने के जज्बात में हम फंस जाते हैं. और बहुत कम लोग उस वक्त होते हैं जो एक दूसरे के रेस्क्यू के लिए आते हैं, जिनको चीज़ें याद रहती हैं, वरना वो कहते हैं हमारी बहन मारेगी तो दूसरे के भी मारेंगे, या हमारे साथ ज्यादती हुए तो दूसरे के साथ भी करेंगे. ये बहुत कम लोग ऐसे दुनिया में रह जाते हैं. और ये सिर्फ इसलिए होता है कि हमें इल्म नहीं है. हमें, अगर हम हिंदू हैं तो हमें नहीं पता कि हिंदू क्या होता है. अगर हम मुस्लिम हैं तो हमें नहीं पता असल मुस्लिम क्या होता है. अगर हम किसी भी रिलीजन से हैं और भगवान को, रब को, लॉर्ड को मानते हैं, तो असल में क्या करना चाहिए, इंसानी जान की क्या कीमत. वो कीमत जिसकी वजह से वो इंसान खुद अपनी जान नहीं ले सकता, वो उसके लिए इतनी सख्त सजाएं, क्योंकि उसके लिए इतना बड़ा बिखेड़ा पूरी दुनिया, पूरी यूनिवर्स बना के रख दी गई है. आप, इस डिजर्शन इज़ नॉट एन ऑप्शन, किलिंग समवन एंड गेटिंग, यू नो, किलिंग योरसेल्फ इज़ नॉट एन ऑप्शन एट ऑल. ये इतना सेक्रेड काम है इंसान जो है, और हमने उसके साथ क्या कर रहे हैं,
2: कोई वैल्यू नहीं है लाइफ की.
0: जब, और दूसरा, जब अरबों पैदा हो जाएंगे ना, दोनों मुल्कों में कम से कम 2 बिलियन होने वाले हैं, सो 2 बिलियन में कितने दिमाग इस्तेमाल कर रहे होंगे, कितने लोगों को बेसिक ह्यूमन राइट्स मिल रहे हैं. अगर आप स्लम्स में जाके इंडिया में, पाकिस्तान में, बाकी जगहों पे देखें उन लोगों को, उनको सिर्फ नंबर्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है. ना उनकी कभी वैल्यू थी, ना कभी होगी आगे जाकर. और ये कि मुल्क वालों को, ये ऊपर वालों को एहसास है ये बहुत फ़नी बातें करते हैं हम कभी कभी, कि उनकी वजह से ऐसे हो रहा है, या ये अटैक इसलिए हुआ है कि कुछ बंदे मर गए, या ये अटैक इसलिए हुआ है कि फ़लां बंदे मर गए. बंदे तो रोज़ मरते हैं, हम खुद मारते हैं अपने बंदे रोज़. तो बाहर से मर गए और फलां मर गए, ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, सब हमको यूज़ किया जाता है, लेकिन हमारा दिमाग जो है वो बहुत अभी बहुत इन्फेंसी में है। मतलब अगर हज़ार लाखों, ये कहते हैं जी क़यामत आ जाएगी, उससे पहले इंसान ने रिफ़ाइन होना है, तो फिर तो मतलब 10,000 साल की आपको रिकॉर्डेड हिस्ट्री नज़र आती है। अभी तो बहुत कुछ रहता है। अभी तो मैं ना एक दफ़ा कॉलेज के ज़माने की बात है, वहाँ पे एक टेक्सला एक जगह है पाकिस्तान, तो वहाँ पर उधर पुराने हड़प्पा के ज़माने के बहुत पुराने पुराने जो रूवंस हैं वहाँ मिलते हैं। तो हर ज़माने में इंसान को ये लगता था, इससे बहुत पहले भी जब अहराम मिस्र आप देखते हैं तो इतने बड़े बड़े पत्थर किन मशीनों से उठाए गए, कैसे वहाँ पहुँचाए गए, तो हर ज़माने में बड़ा बड़ा कुछ होता रहा है और कमाल किस्म की कौमें आई, उनके पास ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी थी। तो वहाँ पे आप क्योंकि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और ऐसे लिक्विड्स और ऐसी चीज़ें ईजाद हो गई हैं जो कि बता सकती हैं कि कौन सा पत्थर, कौन सी जो कंस्ट्रक्शन है वो किस ज़माने की है। तो वहाँ पर एक दीवार थी जो उन्होंने निकाली थी, तो वो दीवार बुद्ध मत के, वहाँ पे बहुत पुराने लोग हैं और बुद्ध जो थे वो बिफोर क्राइस्ट थे एक्चुअली, 400 से 500 साल, तो उनका भी था और हर ज़माने की जो चीज़ें बताई गई थी। तो 5,000 साल की कम अज़ कम एक दीवार थी जिसमें 3 डिफरेंट टाइम्स की कंस्ट्रक्शन हुई हुई थी। तो इसका मतलब है एक ही दीवार के अंदर 3 डिफरेंट टाइम्स की कंस्ट्रक्शन हुई थी। वर्ल्ड इतनी दफ़ा टॉपल ओवर होकर ज़मीन ऊपर नीचे हो चुकी थी जलजलों से, और उसके बाद वो कुदरती वो उन्होंने चीज़ें ऐसे बनाई थी कि उन्होंने काट काट के उसको एक छोटी सी दीवार बना दिया था, कि 5,000 साल की हिस्ट्री उसे एक दीवार में थी। और इंसानों ने ना उस ज़माने में कुछ सीखा ना इस ज़माने में कुछ सीखा। और उस ज़माने में एक वक्त पे जब बुद्ध मत बहुत हो गया रिलीजन के तौर पे, तो वो तो जानवर भी नहीं मारना चाहते, इसलिए वेजिटेरियन भी होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उनकी, तो वो हथियार भी नहीं उठाना चाहते। तो एक वक्त में उन पे जब उनको इन्वेड कर लिया गया तो उन्होंने हथियार नहीं उठाए, तो तकरीबन 60,000 बुद्ध के जो पैरोकार थे, बख्शु भी उनको कहा जाता है, और जो उसके थे, हथियार नहीं उठाए और 60,000 को सर काट दिए गए। तो ये लड़ाई करके आगे से सेल्फ डिफेंस, इसलिए इंसानों के लिए सेल्फ डिफेंस को जायज़ किया गया है, ताकि इस तरह के इंसान के अंदर, अब बहुत बड़े बड़े हैवान हैं, हैवान बेचारा तो इतना जालिम नहीं हो सकता जितने इंसान होते हैं और ये सब चीज़ें, लेकिन अगर आप नहीं जानेंगे ख़ुद को तो अपने अंदर के जानवर को टेम नहीं कर सकेंगे। ये जो सर्वाइवल के लिए हमारे अंदर एक तड़प है, थोड़ा हमें थोड़ा हमेशा बहुत भी हमें बहुत थोड़ा लगता है, और इसी सर्वाइवल में, और मेरी औलाद, मेरी माँ, मेरा बच्चा, ये जब तक हम इससे बाहर नहीं निकलेंगे कभी दुनिया में आसानी, शांति, ये सब चीज़ें नहीं आती, और यही असल इम्तिहान है इंसान का। ठीक है, और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी। दिस इज़ आज़ाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोएम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं, जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा, ज़िंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।
3: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
4: Inspire FM.
5: Inspire 105.1 FM.
6: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. New year, new me. What does that look like for you? Keep listening to find out more. The Prophet Muhammad, peace be upon him, said, "The best among you are those with the best character. So speak kindly, be honest, keep your promises, and treat others with respect." Having a good character is a sign of true faith. Stay connected, stay inspired. Thanks for tuning into Inspire FM.
7: Graceland solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Greystone Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Greystone Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
8: Rishta Networking. आज के इस मसरूफ और गहमा गहमी के दौर में रिश्ता ढूंढना किसी मुहिम से कम नहीं। ये एक मुश्किल काम है, लेकिन घबराइए नहीं। इंस्पायर एफएम रिश्ता नेटवर्किंग के साथ मिलकर कम्युनिटी के इस मसले में आपकी मदद के लिए अपनी खिदमत पेश कर रहा है। 12 सितंबर बरोज हफ्ता दिन सुबह 11:30 से सपहर 4:30 बजे तक एम्बरली गार्डन मार्की गोर्स फार्म हाई रोड बेडफर्ड MK453AB में सिर्फ खवातीन की नशस्तों का एहतमाम किया गया है जिसमें आप अपने अजीज व अकारब के लिए रिश्ता ढूंढ सकेंगे। हमारे पास महदूद नशस्तें बाकी हैं, आज ही रजिस्ट्रेशन करवाइए और इस कार्य खैर में हिस्सा लीजिए। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए www.rishta-networking.co.uk। अपने जीवन साथी की तलाश रिश्ता नेटवर्किंग और इंस्पायर एफएम के साथ।
9: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
10: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more. A continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your Akhirah at www.wanuma.org.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
1: बचपन से सुनते आए हैं ये नहीं कहना वो नहीं करना सवाल नहीं पूछना और फिर इसी रविश से हमारे जहनी और माशरती मसाइल उलझते चले गए. हमारे मसाइल हमारे हालात से नहीं हमारे ख्यालात से पैदा होते हैं और ख्यालात दुरुस्त किए जा सकते हैं. मैं हूँ आज़ाद और अगर आप भी चाहते हैं कि हम सब आज़ाद हो सकें अपने ही पैदा किए हुए मसाइल से तो बात कीजिए क्योंकि अब बोल के लब आज़ाद है तेरे. ओनली ऑन इंस्पायर FM.
2: Hello and welcome, ladies and gentlemen. Hello and welcome, Dallas, Fort Worth, and the whole world listening to Radio Azad, Voice of the People. Tamam sunne walon ki khidmat mein assalamu alaikum. A very, very warm welcome to the show. Sun rahe hain ji aap bol ke lab azad hain tere.
1: Aaj kaise yaad kiya aapne? Ye to baaton se baat nikal hai.
3: आज नहीं मैं तो शो सुनती हूँ लाइक व्हाटएवर टाइम आई गेट यू नो लास्ट वन आवर यूजुअली बिकॉज़
1: कॉल करने से पहले भी तो कुछ सोचा होगा ना कुछ तो होगा दिमाग में.
3: आई लिसन टू योर शो ऑन वॉर दैट वाज द लास्ट वन आई लिसन एंड आई वाज ट्राइंग टू लिसन दैट शो ऑन मंडे.
1: वॉर वाले शो से क्या सीखा?
3: वॉर वाले शो से आई थिंक व्हाट आई अंडरस्टूड इज व्हाट यू एक्सप्लेन्ड. आई वाज यूज्ड टू थिंक व्हाई पीपल व्हाई दीस कंट्रीज फाइट ऑल द टाइम एंड यू सेड दैट इज आई फील लाइक इट्स टू मच ड्रामा ये टू मच मैथ डिस्ट्रैक्शन इवन डिस्ट्रैक्शन करना होता है और आई मीन दिस इज नॉट गोइंग टू कम टू एन एंड. नोबडी वांट्स टू दिस टू कम टू एन एंड यू नो. सो आई मीन लाइक देयर इज सो मच I don't know. I, you know, all this is.
1: चलते हैं. साथ साथ जब जहाँ और आदमी इतना इल्म हासिल करता है ना इल्म जो है ना उसकी कोई एंड नहीं है और आप कभी आपको लगता है ना कि इल्म बहुत हो गया या मेरे लिए इतना काफी है इल्म कभी काफी नहीं होता.
3: No, and I feel like you know, I feel like I have to learn a lot.
1: कोई बात नहीं. ये तो आपको क्या सोक्रेटिस भी कहता था जब उसको बिल्कुल एंड पे पहुंचा तो उसने कहा था आई नो दैट आई डोंट नो नथिंग. तो और जब हुजूर पाक से पूछा गया कि इंसान को इतना इल्म जब आ जाएगा इतना वो खोज लेगा गारों से निकल के महल बनाएगा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाएगा वो ऐसे करेगा वैसे करेगा तो उसके पास कितना इल्म आ जाएगा खुदा के इल्म में से कितना इल्म आ जाएगा. तो उन्होंने कहा जैसे समंदर में आप उंगली डालें बाहर निकालें तो उसके ऊपर जो कतरा रह जाता है बस उतना आएगा लेकिन वो इतना ज़्यादा है क्योंकि खुदा खुद सरापा सर से पाँव तक इल्म है. तो जितना इल्म जो है ना और वक्त और इल्म वो कहते हैं वक्त को बुरा मत कहो मैं वक्त हूँ. इब्ने आदम मुझे तकलीफ़ देता है अजियत देता है जब वक्त को गाली देता है कहते हैं वक्त बहुत बुरा आ गया है. तो वो रब ही वक्त है रब ही इल्म है इस और एक वक्त में बहुत कुछ है. तो इसके बीच में थोड़ा थोड़ा सीखते जाना है समझते जाना है ख़ुद को जानते जाना है अपनी बेसिक ज़रूरतों को समझते जाना है जो मिलता है उसमें से कुछ ना कुछ देने की कोशिश करना है सिस्टम को ट्रिगर करना है अपना रोना धोना बंद करके दुनिया को देखना है कि दुनिया जब आप दुनिया की तकलीफ़ परेशानी और मसाइल देखेंगे ना आपको अपना कुछ भी तकलीफ़ नहीं होगी. मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है पिछले कितने ही 10-15 साल जब से मुझे इस बात की समझ आई है. मेरा एक दुख भी इस काबिल नहीं है कि जो लोगों को मैं देखता हूँ सुनता हूँ और परेशानियाँ मैं उनकी देखता हूँ जैसे उनकी नींद है जैसे वो सुबह उठते हैं जैसे उनके पास सब कुछ होने के बावजूद कुछ नहीं है जैसे वो चीज़ों की उनकी हिर्स हवस ख़त्म ही नहीं होती. जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे उन पे इतना तरस और तकलीफ़ आती है मुझे अपना सब कुछ भूल जाता है. ना कोई दर्द याद रहता है ना किसी का मर जाना याद रहता है ना किसी का छोड़ जाना याद रहता है ना किसी का तकलीफ़ धोखा कुछ भी कुछ नहीं मुझे याद रहता बिकॉज दुनिया में इर्द गिर्द इतनी तकलीफ़ इतनी परेशानी और इतने मसाइल हैं कि आप हर वक्त ग्रैटिट्यूड में रहते हैं. हर रोज एक जन्नत का दिन है एक मौका है एक चांस है.
3: आई एग्री यू नो एक्चुअली दैट्स व्हाट आई फील लाइक यू नो व्हेन आई थिंक ऑल सी अराउंड एज यू सेड आई फील लाइक इवन इफ इनफाइनाइट टाइम्स आई से अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज लेस बिकॉज वी आर सो ब्लेस्ड. आई मीन वी आर सो ब्लेस्ड इफ यू सी यू नो द व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू अल्लाह सुब्हान तआला हैज गिवन टू अस. I mean, we cannot complain about anything, honestly.
1: और अमेरिका में हम जहाँ रह रहे हैं ना ये अगर right. अपना खाना सही कर लेना कम वक्त ठीक है पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स और ये GMOs और ये सब निकाल लें तो इसकी दीवार के साथ जन्नत है इतनी ज़बरदस्त जगह है ये ठीक है.
3: Yes, we have. I mean, that's what I do. Sometimes when you feel like I feel a little down for something or whatever, honestly, I have no reason to be down. You just count your blessings, and when you start counting that, it's you feel like Allah Subhanahu wa Ta'ala has given you everything. I mean, what more you want? What can? Okay, this is the time now just to give to people.
1: Of course.
3: That's what it is now. Just to give whatever you can.
1: Or jo wo thoda thoda bhi hoga, wo प्यार से होगा, मुस्कुरा के देना भी होगा, लोगों से बात शेयर करके देना होगा, इल्म जो आपके पास है उसके बारे में शेयर करना होगा, लोगों के साथ चलना होगा, छोटी छोटी चीज़ों को ओवरलुक करना होगा. एक होती है यू नो द आर्ट ऑफ लुकिंग, गौर करना, ध्यान देना. एक होती है द आर्ट ऑफ ओवर लुकिंग. कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक की जाती हैं, लेकिन जब आप कोई सिस्टम बना रहे होते हैं या कोई चीज़ों को सीधा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उस वक्त ओवरलुक नहीं करना है. इंसानों में जो कुछ है उस पर गौर से हर चीज़ को द आर्ट ऑफ लुकिंग यूज़ करना है, और जो रियलिटी है हर बंदे की वो सब कुछ सामने रखना है. फिर उसके बाद जब आप सिस्टम बनाते हैं, उसके बाद जितने अच्छे लोग मिलते हैं उनका दिमाग कैसा है, दिल कैसा है, उसके बाद आपने ओवरलुक करना शुरू कर. छोटी मोटी गलतियाँ, परेशानियाँ, मसाइल, ये आपने ओवरलुक करते रहने, क्योंकि आपने ज़िंदगी आगे चलानी है, बढ़ानी है, रिश्ते आगे चलाने हैं. मेहरबान हमारे साथ रेडियो आज़ादी रौंदी.
4: नमस्ते आजाद जी, कैसे
1: जी,
4: हैं?
1: बिल्कुल ठीक. आप कैसी हैं? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम. ठीक हैं?
4: नमस्ते. हाँ ठीक है, बढ़िया है. ठीक क्या जो भी है, तो हम कह रहे हैं इसी टॉपिक को फिर शुरू किया.
1: कोई बात, हमने आज
4: यही
1: तो
4: कहानी
1: दो दिन...
4: यही कहानी आप बोलते बोलते जितनी भी बातें आप बताए कल सब में हम लोग सुने, उससे बहुत सी चीजें मालूम हुई, क्योंकि उतना तो हमको कभी मालूम भी नहीं था. जबकि हमारे फादर वार में थे, फर्स्ट वार में थे, ना सेकंड. तो जब गोलियां वोलियां लगती थी तो वो देख करके, हम सबसे छोटे हैं अपनी फैमिली में, छोटी लड़की को क्या पता सब बातें, तो बड़ा दुख लगता था. गोली जहां जहां पर दागे पड़े हैं पंखा के और पीठी पर, तो वैसे ही है कि ये सब तो हमेशा से होता रहा है और लोग मानेंगे नहीं, सभी लोग करते रहेंगे, इसका तो कोई किनारा ही नहीं स्टॉप होने का. तो लोगों को सोचना चाहिए, लेकिन लोगों का विचार जो है तो अपने को सुधारना चाहिए, अपने को कोशिश करना चाहिए कि प्रेम से रह करके कितना फायदा है, तो कोई सोचता नहीं है. और आप इतना सब बताते हैं तब भी उन लोगों को समझ नहीं है, तो इसके लिए तो कुछ कहना ही नहीं. आजाद जी, आप परेशान हो यहाँ जो है, यहाँ पर मैं किसी के मुंह से यहाँ पर तो अभी तक मिली भी नहीं बहुत से लोगों को, लेकिन इवन माय हस्बैंड भी कुछ नहीं बताया, न कहे, न कुछ पूछे.
1: आपके हस्बैंड ने ये जान लिया होगा ना कि न मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा ढल न जाए कहीं. तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग रखें जिनके साथ आपकी खामखा की लड़ाई है. कुछ लोगों को पता ही नहीं होता वो लड़ रहे हैं. ऐसे कई बदबخت लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, उनको पता ही नहीं होता. वो जो लोग अपने आप से लड़ते हैं ना और ख़ुद से हारते रहते हैं, वो दूसरे लोगों से लड़ते रहते हैं. सो ये चीज़ें भी समझनी है साथ साथ, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, चीज़ें होती रहती हैं. किसी को साहब से उन्होंने कहा, और पिछले एक दो दिन से पाकिस्तान में काफ़ी मसाइल हैं, बड़ी तकलीफ़ में हैं लोग, बड़ी परेशानी में. और यहाँ पर भी जो लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे वो भी पूछ रहे हैं जी कि ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सर, तो मेरे ख्याल से फ़िलहाल के लिए आप लोगों को अपने जो ट्रैवल्स हैं, जो भी, क्योंकि ये काम अब बढ़ गया है. ठीक है, देखिए मैंने आपको क्लियर कट बताया था, जो सवाल पूछा गया था कि जंग होगी या नहीं, तो जंग नहीं होगी लेकिन लड़ाई होगी. ठीक है, लड़ाई होगी और लड़ाई चलती रहेगी. तो इसीलिए थोड़ा सा चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि मैं साथ साथ, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस बात से रिलेटेड तो बहुत सारा, क्योंकि इस वक्त मीडिया जो फैला रहा है, अल्लमान अल हफीज़ कख नहीं पता है मीडिया को, ऐसी फेक न्यूज़ का एक ड्रामा चल रहा है और ऐसी ऐसी बातें घर से घड़ रहे हैं. और अफसोस की बात यह कि अगले दिन शर्मिंदा भी नहीं होते, मतलब इतने बड़े बड़े झूठ दोनों तरफ से. कोई हद होती है ना झूठ की, कम अज़ कम कोई ऐसे झूठ बोलो जो माने भी. साइकोलॉजिकल वॉरफेयर समझते हैं हम भी, केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर तो हो नहीं सकता, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर तो चलें, एक जब से इंसान है तब से जंग है. ठीक है, और ये जंगें चलती रहेंगी, जब तक हम और आप जिंदा हैं ये जंगें चलती रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन कम अज़ कम कोई ऐसे झूठ होते हैं जो कि आजकल के, कोई 1940 40s या 70s थोड़ी चल रही है, ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर बंदा कैमरा, हर बंदा गन लेके फिर रहा है, कैमरा लेके फिर रहा है, वो हर वक्त वो हर चीज़ देख रहा है, चाहे वो इंडियन हो चाहे पाकिस्तानी हो, तो उसको आप छुपा कर और झूठ नहीं बोल सकते दोनों तरफ से। करते हैं बात, रेडियो आज़ादी रौंदी। हेलो,
5: अस्सलाम वालेकुम आज़ाद लाला।
1: वालेकुम सलाम, कहाँ रह गई थी?
5: थोड़ी बिजी हो गई थी, थोड़ी ट्रैवलिंग आ गई थी।
1: अच्छा, हमारी अगले हफ्ते आएगी, हम आपको फोकस पे शो कराएंगे, और हमने ना, और हम सब लोग, फिर आपको पता है आप नहीं आती तो फिर मुसीबत बन जाती है, लोग पूछते बिल्कुल ऐसे जैसे आप ड्रोन ना आए इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तानी वैसे ही कैमरा लेके ऊपर देखते रहते हैं कि भाई ड्रोन किधर है। वो अब मेरे बारे में पूछ सकते हैं लोग, तो आप तो बड़े लोग हैं। आपको पता है बड़े लोगों की सबसे पहली पहचान ये क्या होती है?
5: क्या?
1: वो खुद को बड़ा नहीं समझते। और आपको पता है छोटे लोगों की सबसे बड़ी क्या निशानी होती है?
5: क्या?
1: वो खुद को बड़ा समझते हैं। बस यहीं से। आपको पता है हसीन आदमी की क्या निशानी होती है?
5: नहीं।
1: वो कभी खुद को हसीन नहीं समझता। आपको पता है कोजे और इनसिक्योर आदमी की क्या निशानी होता है? और तारीफें करता रहता है अपनी। तो ये सीधी, वो मैं जो कहता हूँ ना कि अगर एक बंदा कहता है जी मैं बड़ा, मैं क्या, अगर आपको कहने की जरूरत पेश आ रही है, ठीक है, वो मार्गरेट थैचर थी ना, बड़ी अच्छी लाइन यूज की, अगर लेडी को ये कहने की कोशिश, वो बताना चाह रही है कि मैं लेडी हूँ, तो उसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप लेडी हैं या जेंटलमैन है, खुद पता लग जाएगा।
5: कितनी अजीब बात है, यानी आप जितने लोगों से मिले वो खुद अपनी तारीफ खुद ही कर रहे होते हैं, कॉन्स्टेंटली बता रहे होते हैं, बिकम सो अनोइंग, स्पेशली मुझसे नहीं बर्दाश्त।
1: लेकिन वो नहीं, मजे की बातें होती है, लोगों को कहने दें, लेकिन किस किस्म की तारीफें नॉर्मली आप देखती हैं लोग करते
5: हैं? एक तो मैं यानी एक तो अपने करियर की, बस उनसे बेहतर कोई नहीं है, फिर बच्चों की, अगर बच्चों से मैं बहुत परेशान हूँ, उनकी तरह
1: आपको,
5: बच्चे
1: आपको पता है, आपको पता है लोग क्यों करते हैं अपने बच्चों की इतनी तारीफें?
5: क्यों?
1: क्योंकि इन लोगों का प्राइस पोजेशन जो है ना, वो इनके बच्चे हैं जिनकी फ्री विल है, और वो ज्यादातर उनके काबू में नहीं, और ज्यादातर बच्चे आज, मैं कम अज कम इस वक्त ना 15 बच्चे हैं मेरे दोस्तों के, जवान बच्चे और हमारे बच्चे सब, ठीक है, और हमने जैसे अपने ये बच्चे, हम जो छोटे दो पाल रहे हैं, 20-22 साल के हो गए हैं, तो वो हर बात मुझसे करते हैं, हर बात का मतलब है हर बात, तो वो करते हैं। और बाकी जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं, मैं मेरे दोस्तों के पेरेंट्स हैं, मैं उनकी काउंसलिंग भी कभी कभी करता रहता हूँ, कोई कुछ ऐसी बातें जो उनके पेरेंट्स नहीं कह सकते, वो आगे से बदतमीज़ी करते हैं, मैं बड़े आराम से बड़े सहल पसंदी से कहता हूँ, पर उनको यही पता है, मैं उनसे प्यार वगैरह भी करता हूँ। लेकिन इनमें से सारे हमारे जो बच्चे हैं ना, उन्होंने चरसों से वीड को नहीं एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ सब ने किया हुआ, इन्होंने हमारे वहाँ के जो बच्चे हैं कई जगहों के, अभी शहरों की बात मैं नहीं कर रहा, शहरों में तो हमारे बच्चे बहुत अमेरिकन और इंग्लैंड के बच्चों से बहुत आगे हैं, ठीक है, हर बुरे काम में, गलत काम में। पेरेंट्स बेचारे, आदमी को ये लगता है कि मैंने नहीं किया तो मेरे बच्चे भी नहीं करते होंगे, या हमें कुछ नहीं पता है बाय द वे अपने बच्चों के बारे में, हम उनको कहीं से एक ट्यूटर रखते हैं, कुरान पढ़ाता है उनको, वो पाकिस्तानी और मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद वो फिर एक दिन उन्हें कुछ अजीब सा दिल के दौरे पड़ जाते हैं, फिर वही चीज़ें जो कभी भी नहीं कहते थे, फिर उसको कवर करते करते उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, फिर वो लोग कम्युनिटी से आउट हो जाते हैं, ये कह के कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, ये सारी ज़िंदगी फिर एक दूसरे को भी शक्ल नहीं दिखा सकते। ये होता है झूठ में रहने का और रियलिस्टिक ना होने का। तो जब आप, आपकी औलाद देखें जी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, मैं इस दुनिया में, मुझे इस दुनिया में आए हुए बड़े डेकेड्स हो गए, मैंने अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेके आज तक अपने माँ बाप की फैमिली की तरफ से सबसे ज़्यादा प्यार देखा, वजह जो भी थी मुझे नहीं पता, ना मैं पता करना चाहता हूँ, मैंने अपनी माँ की तरफ से, जो टोटली डिफरेंट लोग हैं, उनसे की तरफ से सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिला, अपने फादर की तरफ से जो फैमिली है सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिला, मैं जब मैंने एक दो प्रोफेशन ज्वाइन किए उनमें मुझे बहुत प्यार मिला, मुझे स्पेशली जो जूनियर्स थे वो और बाकी लोगों से, मेरी लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं, बहुत कदर करते हैं, मेरे नाम पे लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखे करवाए, बहुत सारी चीज़ें की लोगों ने, ठीक है, लेकिन मैं दुनिया में एक बंदे का, एक इंसान ऐसा था जिसका मैं कह सकता हूँ कि वो मैं उसको जानता हूँ, ठीक है, दो बंदे कह लें, खलीक साहब उसमें शामिल कर लें, दो दो तीन लोग कर लें, मैं किसी भी ऐसे बंदे का जो उस वक्त ज़िंदा है मैं उसके बारे में नहीं कह सकता कि वो वक्त पर स्टैंड लेगा, या उसके दिमाग के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का स्ट्रक्चर या उसके अंदर रब का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी ऐसे हिंदू को नहीं जानता, किसी को भी नहीं जानता जो कि असल में हिंदू हो और वेदास सेक्रेड विजडम की जो बुक्स हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेद, अगर मैं उसको सामने बिठा के 10 सवाल उससे पूछूं वो एक में भी क्वालिफाइड नहीं। मैं किसी भी ऐसे मुस्लिम को नहीं जानता कि जब मैं उससे रब को, जिस रब को मैं किताब से पढ़ के जानता हूं, मैं 5-10 क्वेश्चन निकालूं उसमें से वो एक को भी क्वालिफाई कर जाए, प्रैक्टिकली कार्रवाई और ड्रामेबाजी में नहीं। मैं किसी एक ऐसे क्रिश्चियन को नहीं जानता अपने, और मैं बहुत लोगों को मिलता हूँ, बहुत तमाम रिलीजन के लोगों को मैं जानता हूँ, अगर मैं क्रिश्चियनिटी की बेसिक्स खोल के उनसे सवाल करूँ उनको पता ही नहीं। तो इससे समझ ये आती है कि लोगों के साथ रिलीजन की लड़ाई हो ही नहीं सकती। जब हम मुस्लिम हैं ही नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की है, जब हम हिंदू हैं ही नहीं तो फिर लड़ाई किस बात की है, जब हम क्रिश्चियन हैं ही नहीं तो लड़ाई किस बात की है। बेसिक्स में ही हमें अभी तक नहीं पता, किताब खोलकर देखी ही नहीं गई, उसमें आप जब देखेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि हम हमारे रिचुअल्स भी उन तमाम इबादात के ख़िलाफ़ हैं जो उसमें लिखी हुई हैं। बाकी बातें तो बहुत बात की, हम लोगों के बारे में हमें ना औलाद से मोहब्बत, जब हमें मोहब्बत का सर पैर ही नहीं पता तो औलाद से जो भी हम मोहब्बत कर रहे हैं वो सब की सब गलत है। हमें जब पता ही नहीं है औलाद को पालना कैसे है, बड़ा कैसे करना है, ये कितने, मैं आपको बताऊं, किसी भी इंसान को इस दुनिया में अगर ये पता चल जाए कि एक इंसान को पैदा करके बड़ा करने के अंदर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और खुदा की कहां कहां पकड़ हो सकती है, आप यकीन करें कोई भी जागा हुआ माइंडफुल होश में आया हुआ बंदा औलाद ही ना पैदा करे, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग प्लांट्स नहीं रखने के नहीं इस काबिल कि वो प्लांट रख सकें। मैं जब अपने दोस्तों को उनके बच्चों को देखता हूँ और लोगों को अपने इर्द-गिर्द बच्चे पैदा करते हुए देखता हूँ मैं डर जाता हूँ, इन लोगों ने बच्चे पैदा कर लिए तो जहनी तौर पे अभी तक बच्चे हैं। ये छोटी सी इंडिया पाकिस्तान के आपस में झड़प हुई है, इसमें ऐसे ऐसे लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, इनके भी बच्चे हैं और इनके भी बड़े थे। इंसान होने के नाते शर्म आती है मुझको कि इस दुनिया में इस ज़माने में भी हम इतने छोटी छोटी सोच के मालिक लोग हैं और हमें कुछ नहीं पता, और जिस रिलीजन के ऊपर हम इतनी बातें करते हैं, जिसके अंदर 150 फिरके हमने बना लिए हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स अलग अलग, जिसमें हम अपने अंदर ही लड़ते रहते हैं, और हम इतना नहीं सोच सकते कि जब हम लोग गाय के ऊपर, मुकद्दस गाय के ऊपर इतना लड़ते हैं लोग इंडिया में और लोग पाकिस्तान में भी, लोग क्या क्या फजूल बातें बनाते हैं कि ये बात शुरू कहाँ से हुई थी गाय का मुकद्दस होना, और वही गाय जिसमें मुकद्दस होने पे कितने मुसलमानों को, कितने हिंदू आपस में लड़ चुके हैं और कितने नुकसानात हो चुके हैं, उसमें बीफ के मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर नंबर 1 या नंबर 2 इन द वर्ल्ड इंडिया है, और वो बिज़नेस मुस्लिम ज़्यादा नहीं कर रहे, वो जैन भी करते हैं, वो हिंदू भी करते हैं, और ये नंबर सबको पता है, जाकर इंटरनेट पे चेक कर लें, लेकिन कोई नहीं जानना चाहता। मतलब हमारा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर ही झूठ पे है, सब का सब हिपोक्रेसी पे है, और अगर उस क्वालिटी उस हिसाब से मैं देखूं इंसान को तो ये इंसान जो है ना, यकीन करें सिर्फ चलता फिरता 2 टांगों पे, इसको 4 पांव पे जैसे किताब में रब कहते होना चाहिए था, और जानवरों से ही रिश्ते विश्ते करके उसी तरह खाना पीना चाहिए, इसको उसी तरह अपने आप को साफ रखना चाहिए, वही बेसिक्स इसकी नीड्स होनी चाहिए, और जैसे जानवर अपनी औलाद के साथ करता है वैसे हम लोग भी अपनी औलाद के साथ कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें। और सूअर को तो ये भी नहीं पता होता कि अपनी औलाद के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, वो सिर्फ पैदा करता है, और इसी तरह सांप अपने बच्चे खा जाता है। तो हम लोग, कई लोग जो हैं वो अपनी औलाद को खुद खा जाते हैं, उनके अंदर ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई डाल के, इंडियन पाकिस्तानी डाल के, और मुसलमान को तो समझ ही नहीं आई कि ये उम्मा का कॉन्सेप्ट है, एक हद के सरहद का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में, वो तो हर वो बंदा जो रब को रब मानता है, जो अपनी विल सबमिट करता है, वो दुनिया के किसी रिलीजन में कहीं से भी उठ के आएगा, कभी भी पीछे 1000 साल पहले उसका कोई भी रिलीजन था, जब उसने कह दिया रब एक है پیغمبر یہ ہیں اور یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, بات ہی ختم ہوگی. کوئی لائنز تو ہیں ہی نہیں, سرحدیں تو ہیں ہی نہیں. تو یہ کہتے ہیں جی کہ میوزک کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, آرٹ کی کوئی سرحد نہیں. ارے بھائی, رب کے بندے کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, رب کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. یہ تو بہت پہلے کا, 1450 سال پہلے کا کانسیپٹ ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا, ہم جب پھر کہتے ہیں جی, یقین کریں کئی لوگ مجھے کہتے ہیں اس طرح کر کے کہ نا آپ ہمیں انسان نہیں سمجھتے. کئی دفعہ ہم نے محسوس, سچ میں کہتا ہوں ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اگر میں آپ کو انسان نہیں سمجھتا تو میں اتنی جان کیوں مار رہا ہوں 15-20 سالوں سے؟ مجھے تو اس کا پتہ ہے, مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جو حالات ہیں, جو ایکوریٹ لوگ جن کو اولاد نہیں پیدا کرنی چاہیے ان کے گھر میں اولاد ہے, جو لوگ انسان ہونے کو بڑی صرف کھڑے ہونے کو, بیٹھنے کو, انگریزی بولنے کو, اردو بولنے کو, ڈگریاں اٹھا لینے کو انسان نہیں کہتے آپ. یہ سب کا سب ہمیں جب سمجھ آئے گی, ہر بندہ کونڈ ہے, ہر بندے. دیکھیں میں نے آج تک اتنے لوگوں سے ڈسکشنز کی ہیں, اتنے لوگوں سے, ہر بندے کا کہیں نہ کہیں جا کے ایک پوائنٹ آتا ہے جہاں سے اس کے اندر کا مسلم جاگ جاتا ہے, ہندو جاگ جاتا ہے, انڈین جاگ جاتا ہے, پاکستانی جاگ جاتا ہے, فلاں جاگ جاتا ہے. رب کا ایلیمنٹ کبھی نہیں اس کو جاگتا اس کا, کیونکہ رب کے ہم نہ جانتے ہیں, نہ سمجھنا چاہتے ہیں, نہ ہم اس سفر کے اندر ہیں. جب تک یہ لائف رب کو نہیں جانیں گے, خود کو نہیں جانیں گے, دنیا کو نہیں جانیں گے, زندگی کو نہیں جانیں گے, ہم کبھی مضبوط رشتے نہیں بنا سکتے. اتنے لوگ عشق کرتے ہیں, میں ڈرامے تھک گیا ہوں, یہ سنی شیعہ کی محبتیں, پھر پوری فیملی سے لڑائی, اور اس کے بعد جب بڑی مشکل سے شادی ہوتی ہے, اور اس کے بعد 2-4 سال کے بعد جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر کھچا کھچائی, ایک ان کو سنی بنانے پہ تلا ہوا ہے, ایک ان کو شیعہ بنانے پہ تلا ہوا ہے. یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ پیغمبر کا تو کوئی سنی شیعہ چکر نہیں تھا. جب مجھے پتا چلا سنی شیعہ کیا ہے, میں کہاں پیدا ہوا تھا, کیا ہوا تھا, میں نے تو یہ کام ہی ختم کر دیا. میں تو نہ سنی لکھتا ہوں, نہ شیعہ لکھتا ہوں, تو نہ میں بتاتا ہوں لوگوں کو, کیونکہ یہ تو چکر ہے ہی نہیں. تو یہ تو بہت بعد میں آتے ہیں. جب آپ کو ایکوریٹی پتہ چلے گا, حضور پاک نماز کیسے پڑھتے تھے, آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم کیسے پڑھنی چاہیے. ہم کو ابھی تک کسی نے ریسرچ کی ہے کہ خدا کا بندہ جس کی وجہ سے سارا پیغمبر ہے, ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا تھا, اور ہم اور ہمارے ہزاروں سالوں سے جو بھی یہ ہمیں باتیں بتائی جا رہی ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ چلا چلایا ہوا سارا کام ہے. تھوڑی سی کوشش کر لینا, آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں, ہم امریکہ میں رہتے ہیں, کوئی اٹیک ابھی نہیں ہو رہا یہاں پر, بیسک نیڈز ہماری پوری ہیں, تھوڑی سی ریسرچ کر لینا, تھوڑی سی کاموں کو فگر آؤٹ کر لینا. اور آپ کو پتہ ہے یہ والی جو حدیث ہے کہ جو انسان رب کو نہیں مانتا, وہ اگر فگر آؤٹ کرنا چاہتا ہے کہ رب ہے یا نہیں, وہ صرف اس انٹلیکچوئل پرسوٹ میں اپنی زندگی گزار دیتا اور کوشش کرتا رہتا ہے. اس میں وہ مر بھی جاتا ہے تو وہ جنت کا پہلا حقدار ہے. صرف کھوجنے کا اتنا اجر ہے, اتنی ویلیو ہے. یہ دوسروں کو اپنی طرح کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ خود ہی نامکمل انسان ہیں, دوسرے نہ کو نامکمل بنا کے آپ ڈائریکشن دکھا کے اگلے کی ڈائریکشن گم ہو جاتی ہے, نہ آپ ساتھ چل سکتے ہیں, نہ چلا پاتے ہیں. تو یہ ساری باتوں کی کوئی تک ہی نہیں ہے. جنگیں تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر میں کچھ دن جنگ کو کھول کے رکھوں اس جنگ کو, تو آپ کو پتہ چلے یہ جو ابھی چل رہی ہے یہ کہاں شروع ہوئی تھی, یہ کس کے ٹیبل پر شروع ہوئی تھی, یہ کس جگہ پر ہوئی ہوگی, اس وقت جو بلاگس ہیں اس میں کہاں پر آپس میں مل کر کی ہوگی, آج سے 5-10 سال کے بعد جب ڈاکیومنٹس کو ڈی کلاسیفائی کیا جائے گا تو ٹرمپ کے زمانے میں بتا رہا ہوگا, یہی باتیں ہو رہی ہوں گی کہ یہاں سے یہ دو بندے, یہ دو ملک تھے, انہوں نے ایسا کہا, ہم نے بیچ میں سے ان کو ایسے کہا, اور ہم نے کہا بس اتنا اتنا کر کے پیچھے ہو جاؤ. یہ سارے کا سارا آپ کو ایک دن ڈی کلاسیفائی ہو کے مل جائے گا. یہ پوری جنگ کی ایک حقیقت ایک ٹیبل کے اوپر ختم ہو جاتی ہے, وہیں سے یہ شروع ہوتی ہے. جیسے ایک فلم ہوتی ہے, فلم ایک ٹیبل کے اوپر بنتی ہے ساری کی ساری, اس میں ٹیئر جرکرز ڈالے جاتے ہیں, ایموشنز کہاں سے آئیں گے, کون سے ڈالیں گے, یہ ایک لائن ہوگی, یہ کانفلکٹ ہے اس کا, یہ اس کا ریزولوشن ہوتی ہے. اس میں پھر اس کے بعد آتا ہے کس کو رکھیں گے, ان ایکٹرز کے نام کے اوپر پھر پیسے لیے جاتے ہیں, پھر اس کے بعد کس کو رائٹس دیے جاتے ہیں, وہ سب مل ملا کر فلم پہلے سے پتہ ہوتی ہے, 100 ملین کی ہے, 200 ملین کی ہے, 23 ملین کی ہے, 50 ملین کی ہے. اس سے پہلے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے میں 23-40-50 اس کے جتنے بھی بننے, یہ سب ایسے بنیں گے, اور اس سے ہمارا یہ مقصد ہے اور یہ ہم نے اس سے حاصل کرنا ہے. دیٹس آل. एग्जैक्टली इसी तरह ये सारी फिल्में हम उसमें सिर्फ पॉन का कैरेक्टर करते हैं, हमारी कोई औकात कोई समझ कुछ भी नहीं, ना कोई हमारे लिए कुछ करता है और ना हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, यूज ज़रूर हो जाते हैं बिकॉज हम नहीं जानते। और आपको रब का जुमला सुनाऊं मैं, और तुम्हें सुकून कैसे आए तुम जानते जो नहीं हो, समझिए। और यहाँ आज के हमारे इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है जी, दिस इज आजाद साइनिंग ऑफ। यू कैन ऑल्सो लिसन टू आवर रेडियो स्टेशन एट www.radioazad.us। इसके अलावा अगर आप पोइम्स सुनना चाहते हैं, नज़में सुनना चाहते हैं, तो आप साउंड क्लाउड पे जा सकते हैं, मिक्स क्लाउड पे। स्पेशली बताना ज़रूरी है उन तमाम लोगों को जो शोज़ की रिकॉर्डिंग या अपने फेवरेट शोज़ की रिकॉर्डिंग सुनना चाहते हैं अपने टाइम के ऊपर, आप लोग मिक्स क्लाउड पे जाके रेडियो आज़ाद को सर्च कीजिए और हमारे शोज़ वहाँ पे आप उनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और ये तो आपको मालूम ही है कि जिन लोगों के पास आईफोन ऐप है, एंड्रॉयड है, ब्लैकबेरी है, स्मार्टफोन्स हैं, वो लोग हमें हमारे आईफोन ऐप के थ्रू सुन सकते हैं जो है रेडियो आज़ाद। तो हम याद रखिएगा जिंदगी तो फिर मिलेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कीजिएगा, रब आपके लिए आसानी पैदा करेगा। खुदा हाफिज़।

एक सिनेरियो में आपने अपनी पहले पूरी कोशिश की जहां तक कर सकते थे और जहां आप अपनी लिमिट तक पहुंच गए, अपनी इंतहा तक पहुंच गए, उस इंतहा पे पहुंचने के बाद फिर आपने मदद मांगी, और दूसरी सूरत हाल में क्या हुआ? आपने क्या अपनी पूरी कोशिश पहले की ना, बस मदद मांग ली और फिर बैठे हैं, यार को मदद नहीं कर रहा, कोई मेरी मदद ही नहीं करता, मैं बैठा कब से मदद मांग रहा हूं, मदद आ ही नहीं रही। जब इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ले और फिर उसकी अपनी पूरी कोशिश काफी ना हो और उसके काफी ना होने की वजह से अब वो मजीद मदद मांगे, उसको कहा जाता है इस्तेआना आउन से। तो हम कहते हैं आनाकल्ला, दुआ अरबी में आनाकल्ला, अल्लाह ताला आपको आउन दे अपनी। इसका मतलब क्या है? आप बड़ी कोशिशें कर रहे हैं लेकिन आपकी कोशिशों की एक हद है, उस हद से आगे आप इंसान होने के नाते नहीं जा सकते, उसके मजीद अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और ये अल्लाह ताला का एक कायदा है, वो क्या है? अल्लाह किसी की मदद नहीं करता जो पहले अपनी पूरी कोशिश ना कर ले। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दावत दी, उनकी दावत की बहुत मुखालफत की गई, उस मुखालफत के जवाब में उनको आग में फेंका जाना था, और उस तमाम शिद्दत को बर्दाश्त करने के दौरान अल्लाह ताला ने पहले से नहीं बता दिया आग ठंडी होगी, फिक्र ही ना करो। पहले अपनी तरफ से इंतहाई सब्र उन्होंने खुद किया है, और जब फेंके गए उसके बाद हुक्म क्या आया है? या नारू कुनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, आग ठंडी हो जा। अल्लाह ऐसा भी कर सकता था कि आग जलती ही ना, शुरू से वो जलाने की कोशिश करें जले ही ना, ऐसा भी हो सकता था, वो नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से में लाठी क्या बन जाती थी? सांप बन जाती थी। मैं कहता हूं अगर सांप बनी जाती थी और इतना डरावना सांप था और वो फिरौन के महल के अंदर मौजूद था और लाठी फेंकी और सांप बन गया, तो मसला ही क्या था? सांप ने थोड़ा सा ऊपर चढ़ के एक ही दफा तो डसना था, सारा मसला हल, फिरौनियत का सारा मसला हल, हुकूमत गिर जाती, मूसा अलैहिस्सलाम उसी वक्त हुक्मरान बन जाते, सारी कहानी खत्म। वो इधर उधर सांप जो है वो हैयतुन तसआ इधर उधर घूम रहा है लेकिन कुछ कर नहीं रहा वो सांप, और फिर उसको दोबारा सोटी बना दिया। मैंने कहा मेरे पास सांप होता तो मैं तो पहले उसके मुंह पे फेंकता फिरौन के, मसला हल करो पहले, सांप का फायदा क्या, डसेगा नहीं तो, राइट। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम की इंतहाई कोशिश का पहले इम्तिहान दिया जाता कि नहीं? पहले इंतहाई कोशिश फिर अल्लाह की मदद आती है, पहले इंतहाई कोशिश फिर अल्लाह की मदद। सहाबा बदर में गए हैं, हमारी सीरत नबी की सीरत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा बदर तक पहुंचे हैं। आपको पता है बदर का हवाला कुरान ने दो मर्तबा दिया है और दोनों मर्तबा बताया है कि फरिश्तों की तरफ से अल्लाह ताला ने फरिश्तों की मदद भेजी थी बदर में। वलकद नसरकुमुल्लाहु बिबदर व अंतुम अज़िल्ला, अल्लाह ने तुम्हारी बदर में मदद की थी और तुम कमजोर थे। जो फरिश्ते हैं, ऐसा भी हो सकता था कि सहाबा अभी मैदान जंग में पहुंचे भी नहीं और फरिश्ते सारा मामला खत्म करके बैठे हुए, क्योंकि अल्लाह ने मदद भेज दी। लेकिन पहले क्या किया? आप बार बार किस्सा सुनते हैं, 313 थे, इतनी सी हमारे पास जो है वो तलवारें थीं, दो तीन घोड़े थे, कुछ ये चीज ये सामान नहीं था, और उनकी 1000 फौज थी। अल्लाह ताला ने 2000-3000 फरिश्ते भेजे थे, और फिर ये भी कह दिया था युम्दिदकुम रब्बुकुम बि खमसतिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, 5000 मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, 5000 भेज दे, उसके लिए क्या है 1000 के मुकाबले में 5000 भेज दे, यू नो उहद में 3000 से क्या 5000 भेज दे। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले से मदद नहीं की, पहले क्या देखना होता है? इंसान की भरपूर कोशिश। ये जो दावा किया है ना, ये वो जिसको कहते हैं ना छोटे मुंह बड़ी बात, ये कहलवा दी अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला हम आपसे उस वक्त मदद मांग रहे हैं जब हम अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, ये बात कही जा रही है। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी इबादत करने में बड़ी कोशिश करते हैं, और जब अपनी कोशिश की हद तक पहुंच जाते हैं और फिर इस बात का एहसास होता है कि इससे आगे हम खुद कर नहीं सक रहे, तब हम आपकी मदद मांगते हैं, ये एक रास्ता है। अब आप इस चीज़ को कंपेयर करें, इसका तकाबुल करें, हमारा जो रवैया है इस्लाम में आज, हमारी कौम का अल्लाह ताला से मदद मांगने का जो रवैया है, जो आप आम तौर पे देखते हो,

0: اهدنا الصراط المستقيم. इसको समझने के लिए इसका मैं सिर्फ अभी आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर आपको ब्रेक दूंगा. इसको समझने के लिए एक मिसाल समझ लें. मैंने कल आपको एक अजीब सी मिसाल दी थी. फ़र्ज करें कि आप मेरे पास आके कहें आज के बाद नुमान तुम मेरे गुलाम हो. मैं कहूँ चलो ठीक है, सही है. अब फ़र्ज़ करें आपने कहा मैं गुलाम हूँ, मैंने कबूल कर लिया, और फिर मैं बैठा हूँ आपके साथ सोफे पे आधा घंटा, 20 मिनट, 40 मिनट, आपने कुछ कहा ही नहीं. फिर मैं कहूँ अच्छा गुलाम तो मैं हूँ, कुछ करवाना है. अगर मेरा जो मालिक है वो कुछ कहेगा नहीं कि जाओ घास काटो, घर साफ करो, खाना पकाओ, जब तक वो कुछ कहेगा नहीं तो वो मालिक कैसा हुआ? क्योंकि अगर मालिक कुछ कहे नहीं तो मैंने क्या करना है? अपनी मर्जी. उसके कहे बगैर उसके मालिक होने का, उसके रब होने का नाता पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक रिश्ता है ना, मालिक और रब और अब्द. रब जब तक हिदायत नहीं देगा, इंस्ट्रक्शन नहीं देगा, अहकाम नहीं देगा, कहेगा ये करो ये ना करो, ये इस वक्त करो ये ऐसे करो, इस चीज़ को सुनो, इस चीज़ पे गौर करो, जब तक वो ये नहीं देगा तो फिर रब सिर्फ कहने का हो गया. मैंने मान तो लिया कि वो रब है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ हो नहीं रहा. ये भी होता है, मैंने ये चीज़ वहाँ US में तो बहुत कम देखी, मुसलमान कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा देखी. हमारे यहाँ टाइटल्स बहुत मिलते हैं जिनसे कुछ होता नहीं है. तो मुझे फलाने प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बना दिया या एडवाइज़र बना दिया, या एक मैं बेना के साथ एक यूनिवर्सिटी थी, मुल्क का नाम मैं नहीं लूँगा, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमारी यूनिवर्सिटी का बेना इंस्टीट्यूट के साथ बहुत तावन है. 10 साल पहले की बात है, कुछ भी नहीं किया हमने, लेकिन एक सर्टिफिकेट है, वो तावन है. यानी कहने को तो एक रिश्ता है लेकिन प्रैक्टिकली कुछ है कि नहीं, नथिंग. कहने की बात है बस. और लेकिन वो जो हाथ शेक करते हुए फोटो लेना बहुत ज़रूरी है. वाह, बड़े मज़े के हैंड शेक्स होते हैं यहाँ. आप सिर्फ हाथ नहीं मिलाते हैं, कहते हैं फिर पकड़ते हैं फिर ऐसे देखते हैं, क्योंकि उसका असल मकसद हाथ मिलाना नहीं होता, हाथ मिलाने का रिकॉर्ड होना होता है जिसको फ्रेम करना होता है. अल्लाह ताला ने अगर अपने आप को रब कहा है, रब कहा है, तो रब होने का तकाजा यह है कि वो अपने बंदे को बताए मेरा बंदा होने के नाते तुम क्या करोगे. अगर वो बताएगा नहीं तो रब किस बात का हुआ फिर वो. तो क्योंकि हमने अभी खुद ही कहा ना कि हम अब बनने को तैयार हैं, इया का नाबुदो, हम आपकी मदद मांग रहे हैं, तो हमने पहली मदद क्या मांगी? ए दिना, हमें हिदायत दें, हमें बताएं हम क्या करें. अच्छा अब तो हो गए लेकिन हमें पता नहीं करना क्या है, कैसे करना है. और इस एहतिना में दो पहलू आ गए, दोनों इया का नाबुदु से भी मुतालिक है, इया का नस्ताइन से भी मुतालिक है एहतिना. यानी हमें हिदायत दें कि आपकी मदद कैसे आएगी दूसरे दर्जे में, और पहली बात हमें हिदायत दें हम इबादत कैसे करें, आपको खुश कैसे करें. पुराने मजाहिब में पता क्या होता था, जो बिगड़ी हुई शक्ल है इस्लाम की, इस्लाम जब अंबिया लेकर आए और फिर आने वाली नस्लें उसको भूल गईं, खुदा को अगर खुश करना है ना तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, वो ऐसे ही नहीं खुश हो जाता. कोई ना कोई बकरी ज़बह करके उसका खून डालना पड़ेगा, कोई ना कोई चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, कोई ख़ास खाना बना के उसके सामने रखना पड़ेगा. आप देखेंगे मंदिरों में और जगहों पर क्या होता है, आप वो खाना लेकर आते हैं और वो सामने पेश करते हैं, ये जी मैंने आपके लिए चॉकलेट केक बनाया है, ये मैंने रखा हुआ है, अब बस आप मेरी ये मन्नत पूरी कर दें. जब तक उस खुदा को कुछ दोगे नहीं वो आपको कुछ नहीं देगा. और ये तमाम मज़ाहिब में, यहाँ तक कि कुछ मज़ाहिब में तो इतना एक्सट्रीम था कि जंग होने वाली है और हम जीत नहीं सकते जब तक फलानी जो देवी है उसकी मदद नहीं आएगी, उस देवी को खून की एक कुर्बानी चाहिए, तो हमारी जो सबसे यंग लड़की है उसको कुर्बान करके पहाड़ी से फेंक दो फिर उस देवी की मदद आएगी. अपनी बच्चियों को वो ज़बह करते थे उस खुदा की मदद लेने के लिए. क्यों? क्योंकि उनका खुदा के साथ रिश्ता और खुदाओं के साथ और देवियों और देवताओं के साथ जो रिश्ता था ना, वो था एक तिजारती रिश्ता.
1: ट्रांजैक्शनल, हम कुछ देंगे फिर वो कुछ हमें देगा।
0: फातिहा में शुरू से ही अल्लाह ताला ने हमसे कुछ मांगा, पहले अपनी नेमतें बताएं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने कुछ किया कि उसने किया है,
0: उसने हम की मुस्तहिक चीजें की हैं खुद।
1: फिर उसके बाद अर रहमान अर रहीम, हमने कुछ किया है भी कि वही कर रहा है,
0: वही कर रहा है। यानी शुरू से ही हमारे किए बगैर हमें दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है, दिया जा रहा है। अब हमें कुछ शर्म आई, हमने कहा मेरे रब हम क्या करें,
1: आपने इतना कुछ कर दिया, अब हमसे भी तो कुछ करवा लें,
0: हमारे नाम क्या खिदमत है। और वो क्या है, एहदिना
1: एहदिना, हमें कुछ तो कह
0: दें। आप मुझे ये बताएं, हम जितना भी कर दें, अल्लाह ताला जो हमारे लिए करते हैं उसका मुकाबला किया जा सकता है
1: ना?
0: तो ये एहदिना में भी जो अल्लाह ताला हम से जो हम हिदायत मांग रहे हैं ना, वो असल में अल्लाह ताला को पहचानने के बाद कम अज़ कम हमारे रब हम इस बात का इतराफ़ करते हैं कि हम आपका कभी हक़ तो अदा कर नहीं सकते, लेकिन अगर कोई छोटी मोटी ऐसी चीज़ है जो हम अगर पूरी कर दें तो आप हमसे राज़ी हो जाएं, आप हमारी इबादत कबूल कर लें, तो वो बता दें वो क्या होगी। यह है एहतना। और फिर एहतना के अंदर अगर कहा होता मुझे हिदायत दे दें, एहतिनी एहतिनी अस्सिरातुल मुस्तकीम, लेकिन हमने एहतिनी नहीं कहा, क्या कहा है,
1: एहदिना।
0: अच्छा, शुरू में जब हम्द की थी ना, जब मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ दिल से, तो मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा होता, किसके बारे में सोच रहा होता हूँ,
1: अपने बारे में।
0: जब मैं अल्लाह के बारे में कहता हूँ अर रहमान अर रहीम, अल्लाह की जो मोहब्बत है उसका मेरा मेरे लिए ख्याल है, किसके बारे में सोच रहा होता हूँ, अपने बारे में, इनफरादी बात है। मालिक यौम अद्दीन, मुझे आपकी फिक्र होती है, अपनी फिक्र होती है, अपनी फिक्र होती है। अभी तक जो सारी बात हो रही थी वो फर्द की थी, मेरी थी, तो यहां तक जो बात पहुंची तो मुझे कहना क्या चाहिए था, तवक्को क्या थी, मुझे हिदायत दें। अभी तो बात, हर बात का इशारा मेरी तरफ वापस जा रहा है, मैं रब, मैं अब्द हूं। लेकिन इबादत की और हिदायत की जो तलब हमने की है वो इकट्ठे की है, इसमें भी एक बात की तरफ इशारा है कि यह हिदायत अकेला इंसान नहीं कर सकता, अकेले इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको किसी ना किसी का सहारा चाहिए। हमें इकट्ठे हिदायत दें। और इसमें एक खुद गर्जी से भी निकाल दिया हमें, या अल्लाह मुझे हिदायत दे, बाकी भाड़ में जाए
1: बस मैं और तू।
0: नहीं नहीं नहीं, इसमें अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की फ़िक्र करना भी सिखाई। अगर मेरे रब में इतनी रहमत है, इतनी मोहब्बत है, इतना ख्याल है, और उसने मुझे बनाया है, तो मेरे अंदर भी उसकी कुछ झलक तो आएगी ना, कि मुझे भी किसी और का ख्याल है, मुझे किसी और से भी मोहब्बत है। और जो चीज़ मैं अपने लिए इतनी बुरी तरह चाहता हूँ, मैं सिर्फ अपने लिए नहीं चाहता, मैं सबके लिए चाहता हूँ। यह आखिरी जो जो तामुल है, इसके बाद मैं आपको ब्रेक देने लगा हूँ, ज़रा सोचना इसके बारे में। अगर इसका मफहूम आप वाकई समझे हैं, मुझे हिदायत देने कहा, हमें हिदायत दें कहा है, अगर इसको वाकई हम समझते हैं, इसका मतलब पता है क्या है, मुझे औरों के लिए क्या चीज़ चाहिए, जो हिदायत मुझे अपने लिए चाहिए, वही हिदायत मुझे उसके लिए चाहिए। और जिस नरमी से और जिस नरम दिल से मैं अल्लाह ताला से हिदायत मांगता हूँ ना, उसी नरमी से मुझे किसी और के लिए भी हिदायत चाहिए। तो जब आप किसी को बड़ी नफ़रत से हिदायत देने की कोशिश करते हैं, जब आप ये लोग तो जहन्नमी है, जहन्नमी, इनको देखो काफिर हैं, ये काफिर, ये फलाने ऐसे हैं, ये फलाने मुशरिक हैं, ये फलाने उधर, जिस जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये एहतना की रूह से सही है कि नहीं? अगर वाकई एहतना समझे हो, और कोई बहुत ही गलत रास्ते पर है, बहुत ही गलत रास्ते पर है, इस फातिहा के पढ़ने में आपने उसके खिलाफ दुआ की है कि उसके लिए दुआ की है, उसके लिए दुआ की है, उसके लिए, और जिस जज्बे से अपने लिए दुआ की है, उसी जज्बे से उसके लिए दुआ की है। ये नहीं कहा अल्लाह मुझे हिदायत दे और उनको भी दे दे फिर भी हाँ चले उनको भी थोड़ी बहुत, एक दिन हम सबको इकट्ठे एक जैसे जो मैं अपने लिए चाह रहा हूं और जिस तरीके से अपने लिए चाह रहा हूं उसी तरीके से किसी और के लिए भी चाह रहा हूं। हमारा आजकल क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है और ऐसा दौर इंसानियत पे गुजर रहा है कि हम एक दूसरे के अफकार को, एक दूसरे की बातों को अब दुनिया के हर कोने में इस तरह सुन सकते हैं जैसे पहले कभी नहीं सुन सकते थे। इसी तरह इस्लाम और इस्लाम से मुतालिक जो बातचीत हो रही है वो अब जिस लेवल पर हो रही है और जितनी ज़्यादा हो रही है पहले कभी नहीं हो सकती थी, राइट? हर तरह के लोग हर तरह की बात इस्लाम के बारे में भी कर रहे हैं, आपको मालूम है। लेकिन एक जायज़ा मेरा क्या है कि अक्सरियत बात जो इस्लाम के बारे में हम करते हैं ना, वो हम किसी और की तनकीद करते हैं। अक्सरियत ये गलत इसलिए है, फलाना गलत इसलिए है, इसकी बात इसलिए नहीं सुनो, इसको इस तरह गलत साबित करूँगा, इसकी इस तरह धज्जियाँ उड़ाऊँगा। और फिर वो जवाब में क्या कहता है, अच्छा मैं गलत हूँ, मेरी वीडियो देखना कि तुम कितने गलत हो। और एक दूसरे की गलतियाँ, और ये दोनों फिर गलत वीडियो, एक दूसरे की गलतियाँ वीडियो रिलीज़ करने के बाद फिर नमाज का टाइम होता है और दोनों इकट्ठे खड़े होकर कहते हैं अपने अपने घरों में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हयात का मजाक नहीं बना लिया हमने? और ये कोई बहुत गहरी तालीम है जो बहुत कुरान पढ़ने के बाद कई सालों बाद जाके समझ में आएगी, तो पहले सफ़े पर है यार। ये तो जब आपने इस्लाम कबूल किया था तब से आपके जहन में ये बात आनी चाहिए थी कि मुझे बाकी इंसानियत की फिक्र है, मुझे उनको गलत साबित नहीं करना, मुझे उनके लिए भलाई चाहिए। और जो रहमत मुझे अल्लाह दे रहा है उसी रहमत का तकाजा है कि मैं लोगों के साथ भी रहम से, मोहब्बत से, इखलास से, खलूस से बात करूँ। और अगर मेरा वाकई किसी के साथ इख्तिलाफ़ है मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी गुमराही में पड़ गया है, मुझे फिक्र है क्या करूँ, वीडियो बनाऊँ उसके बारे में? अगर आपको किसी की फिक्र हो, अपने कज़न की फिक्र हो कि वो किसी गलत रास्ते पर चढ़ गया, तो आप उसकी वीडियो बनाओगे कज़न की? मेरा कज़न जो है वो, मुझे लग रहा था कि वो शराब पीना शुरू कर दी उसने, तो मुझे उसकी बहुत फिक्र है और इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद है कि वो हिदायत के रास्ते पर आ जाएगा। अपलोड। या आपने उसके साथ मोहब्बत की है या उसके साथ नफरत की है? ये नफरत नहीं है। अगर वाकई उसकी फिक्र है तो क्या करते? उसके घर जाते, उसे गले लगाते, उसे साथ बिठाते, उसे कहते मेरे भाई हो तुम, क्या कर रहे हो, नहीं करो ऐसे, कब शुरू हुआ ये, आओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, आओ मैं तुम्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर लेकर जाता हूँ, किसी से बात नहीं करूँगा, ये तुम्हारे मेरे दरमियान है। और ये किस चीज़ का तकाजा है? मोहब्बत का। एक तरफ तो खुतबा हो रहा है इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, सारे मोमिन आपस में भाई भाई हैं, और दूसरी तरफ अपने भाई के ऊपर वीडियो बन रही है। भाई से बात कभी की है? नहीं नहीं नहीं। और फिर दूसरी बात, बात भी करोगे ना, और कोई कहे कि नहीं मैं उससे खुद बात करूंगा, उन लोग कमेंट्स में भी लिखते हैं आप उससे खुद ही बात करें। हाँ मैं करूंगा बात उससे, वो बात को रिकॉर्ड करके उसकी वीडियो बना के करो। दिस इज एहदिना नाउ, ये नया एहदिना है। इयाक नअबुदु व इयाक नस्तईन एहदिना। अगर मैं तो कहता हूं अगर मुसलमान फातिहा पे गौर कर लेना तो उम्मत की शक्ल बदल जाए, हमारा पूरा डिस्कोर्स बदल जाए। किस किस्म का हम मवाद तैयार करते हैं, कैसे हम बात करते हैं, हमारा उसलूब क्या होता है, हमारा एटीट्यूड क्या, सारा का सारा बदल जाए। और अभी हम इस आयत में दाखिल नहीं हुए, सिर्फ इसका मैं ताल्लुक दिखाना चाह रहा था पिछली बातों से। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि हमने अल्लाह से दावा किया ना कि हम इबादत करने को तैयार हैं और हम मदद चाह रहे हैं, तो कैसी मदद हो और कैसी इबादत करनी हो उसके लिए अल्लाह ताला हम सबको इकट्ठे अपनी हिदायत दें। ओके, दो सवाल थे, इसमें से एक मुझे याद आ रहा है इबादत के बारे में, इबादत के कॉन्सेप्ट के बारे में, इय्याका नअबुदु। क्योंकि इस आप सबको इल्म होगा कि जो हिदायत हमने मांगी है इस सूरत में उसका जवाब बाकी कुरान है, यानी उसके जवाब में हमें ये पूरी किताब दी है। तो इसका मतलब ये होगा कि इबादत, इसकी तमाम तालीमात को इबादत ही समझा जाएगा, और इसकी तालीमात में नमाज शामिल है, इसमें कोई शक नहीं।
1: زکوٰۃ شامل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، روزہ شامل ہے، حج شامل ہے، لیکن اس کی تعلیمات میں تدبر بھی شامل ہے، اس کی تعلیمات میں سوچنا بھی شامل ہے، سیکھنا بھی شامل ہے، اس کی تعلیمات میں غور کرنا، تاریخ کے بارے میں سیکھنا، اس کی تعلیمات میں جذبات کو سمجھنا، مختلف جذبات کو سمجھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشکل سے گزرے اس پر غور کرنا، یعنی عبادت کا کانسیپٹ ایک بہت بڑا کانسیپٹ ہے، اور اس میں کچھ چیزیں ہیں جو بہت واضح ہوتی ہیں جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، لیکن اس قرآن نے اس کانسیپٹ کو بہت بڑا بنا دیا۔ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں آپ کو قرآن ہمیشہ عمل میں لانا چاہیے، ایک ایک آیت کو آپ عمل میں لائیں۔ میرا سوال یہ، آپ الف لام میم کو عمل میں کیسے لائیں گے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ عمل میں کیسے لائیں گے؟ عمل میں لانے کی وہ آیات ہیں جن میں عمل کا مطالبہ ہے، اور آیات میں تدبر کا مطالبہ ہے، سوچنے کا مطالبہ ہے، دل کے لرزنے کا مطالبہ ہے، مختلف قسم کے مطالبے ہیں، ہر مطالبہ عمل نہیں ہے۔ عمل تو ایک پہلو ہے عبادت کا، لیکن عبادت کے اور بہت سارے پہلو بھی ہیں، اور کیونکہ باقی مذاہب میں ان سب کو الگ الگ کر دیا گیا، فلسفی اور ہو گئے اور عبادت کرنے والے اور ہو گئے اور احکام پہ زور کرنے والے اور ہو گئے اور جو ہے روحانیت کو سمجھنے والے اور ہو گئے، انہوں نے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کھول لیے۔ قرآن نے کیا کیا، ان تمام چیزوں کو ہمیشہ اکٹھا رکھا اور ایک کو دوسرے سے الگ نہیں ہونے دیا، اور یہی اصل عبادت ہے، اصل عبادت یہ ہے۔ اور یہ کانسیپٹ عبادت کا کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے کلام سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جتنا آپ اس پہ غور کرو گے آپ کا کانسیپٹ خراب نہیں ہوگا، جتنا اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے عبادت کے کانسیپٹ میں کمزوری اور کمی آتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ اس مقام تک پہنچ جائیں گے کہ ہم کہیں گے، کسی کے بارے میں کہیں گے عبادت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر وہ کمائی کر رہا ہے اپنی فیملی کے لیے تو یہ نہیں کہیں گے عبادت کر رہا ہے، رائٹ؟ جب سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی تیاری کر رہے تھے وہ عبادت کر رہے تھے، لیکن ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ عبادت ہے۔ جو تجارت کر رہا ہے اور اس کے ذریعے سے حلال روزی کما رہا ہے وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ عبادت کر رہا ہے، وہ عبادت کر رہا ہے۔ تو اس کا ایک جو جامع تصور ہے نا، اس کو اپنے سامنے رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ خیر، تو یہ ایک بات تھی۔ دوسری بات تھی مضارع کے بارے میں کہ ایاک نعبد، میں یہ نہیں کہا ایاک عبدنا و ایاک استعنا، ہم نے آپ کی عبادت کی، ہم نے آپ کی مدد مانگی، یعنی ماضی میں کہا جا سکتا تھا، لیکن مضارع استعمال کیا ہے۔ مضارع عربی میں مضارع جو ہے نا، یہ حال اور مستقبل دونوں کو شامل کرتا ہے، تو میں نے ترجمہ ایک طرح کیا تھا لیکن اصل میں ترجمہ دونوں طرح ہیں۔ ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں اور کریں گے، ہم آپ کی مدد مانگ رہے ہیں اور مانگیں گے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں مانگتے رہیں گے، اس طرح بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ بھی صحیح ہوگا، مانگتے رہیں گے۔ تو ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے ابھی کی اور فیوچر کی، مستقبل کی، ان الفاظ کے ذریعے سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اوکے، دوسرا ایک سوال آیا تھا العالمین کے بارے میں پہلے، کہ العالمین میں تفسیر میں اکثر و بیشتر یہی کہا جا رہا ہے کہ العالمین میں نباتات، جمادات، پرندے، جانور، جنات، تمام عالم، تمام دنیائیں، تمام جہانوں کا مالک نا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ میں اس بات کا انکار نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کہ قرآن کے الفاظ، جہاں تک میں نے قرآن سمجھنے کی کوشش کی ہے نا، تو قرآن کے الفاظ میں دو طرح کے مفاہیم ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے المعانی الاوائل اور دوسرے المعانی الثوانی۔ انگلش میں سمجھ لیں، پرائمری میننگز، سیکنڈری میننگز، پہلے درجے کے معنی، دوسرے درجے کے معنی، اور یہ قرآن میں بہت جگہ ہوتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا غلط ہوتا ہے۔ میں ڈاکٹر فاضل صالح حسام رائی کے کام سے بہت متاثر بھی ہوں، انہوں نے قرآن کی بلاغت پہ بہت کام کیا ہے، عربی میں ہی کام کیا ہے، عراقی ہیں وہ، سامراء سے، ابھی بھی بغداد میں ہوتے ہیں۔ انہوں نے العالمین کی جو شرح کی تھی اس کے سٹرکچر کی بنیاد پر، اس کی بنیاد پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی، اور میرے نزدیک یہ بات نہ صرف کانٹیکسٹ کے اعتبار سے سینس رکھتی ہے، اور اس کو پرائمری رکھنا چاہیے اس صورت میں جو اوائل معنی ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اوائل معنی کون سے ہیں، انکار نہیں کیا جا رہا ایک کا یا دوسرے کا، لیکن پہلے درجے کے معنی کس کے ہیں، نمبر ون پہ کس کو رکھنا ہے، نمبر ٹو پہ کس کو رکھنا ہے؟
0: میرے نزدیک نمبر ون پہ ذوی العقول،
1: اینا سے ذوی العقول نکلتے ہیں، یعنی فرشتے، جن، انسان، روحیں، یہ تمام العالمین میں شامل ہوں گی، اس دنیا میں یا آخری میں، اگلی دنیا میں. لیکن کیونکہ اس سورت کا اصل مقصد انسانیت سے خطاب ہے اور اس کا اصل مقصد ہدایت ہے ہمارے لیے، اس لیے پہلی پریفرنس میننگ کی اس معنی کو دینی چاہیے جو اس کے ساتھ فٹ کرتی ہے. تو سیاق سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے معنی کو پہلے درجے پہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، خیر.
2: سبسکرائب ناؤ ٹو دی بیگنر یوٹیوب چینل ٹو واچ دی ریسٹ آف دس سیریز اینڈ مور گریٹ کنٹینٹ فرام استاد نعمان علی خان. کمنگ اپ نیکسٹ ٹائم آن آخری معجزہ.
1: جس طریقے سے انسان مانگتا ہے نا، اس سے پتہ چل جاتا ہے اس کو کس کی کتنی ضرورت ہے. آپ کے بچے آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں مجھے 500 چاہیے، مجھے 1000 روپے چاہیے. جس طریقے سے مانگ رہا ہے، مانگنے دینے کا دل نہیں جاتا. پھر آپ بچے کو تمیز سکھاتے ہیں کہ پوچھا کا تمیز سے پوچھا جاتا ہے، ادب سے پوچھا جاتا ہے، اور پھر آپ نماز پہ کھڑے ہو کہتے ہیں اللہ اکبر. اس کو تو تمیز سکھا دی کہ مجھ سے کیسے پوچھتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں. اے دل سراتا وسطی.